0: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय।
0: श्री राम जन्मभूमि की
1: जय।
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि की
1: जय।
0: श्री काशी विश्वनाथ की
1: जय।
0: श्री अयोध्या धाम की
1: जय।
0: श्री सरयू महारानी की
1: जय।
0: जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की
2: जय।
0: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की
2: जय।
0: समस्त पूर्वाचार्यों की
1: जय।
0: सर्व संत वैष्णव भगवान की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: गो माता की
1: जय।
0: भारत माता की
1: जय।

का मुमुक्षुरुपासका भीमतानुरूप गुण विभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिका अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणमहं प्रपद्ये। ओम अप्रमेय कृपारत्नाकराय।

भर्जनम भव बीजानाम मर्जनम सुकृतम्पदाम तर्जनम यम दूतानाम राम नाम इति गर्जनम श्री सीताराम राम राम।

श्री गोविंद गीता अध्याय 10 विभूति योग। अर्जुन श्री कृष्ण को सृष्टि का सृजक, पालनहार, अजन्मा अविनाशी परम पुरुष स्वीकार करते हुए पूछता है कि हे प्रभु, आप इस दृश्य जगत में कैसे व्याप्त हैं? वह किन किन भावों में आपका चिंतन किया जा सकता है?

श्री भगवान अपने विस्तारों को असीम व अनंत कहते हैं, फिर भी कुछ उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि इस जगत में जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो मेरा ही प्रतिरूप है, मेरा ही विस्तार है। परंतु हे परंतप, यह सब तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं तो एक अंश के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त

0: चलती आ रही है, पानी बढ़ता जा रहा है। हर वर्ष बार, हर वर्ष तबाही, हर वर्ष विनाश और बर्बादी। हमें इस उछिंकल जल प्रवाह को रोकना ही होगा, इसे रोकना ही होगा, इसे रोकना ही होगा।
1: उछिंकल जल प्रवाह, उछिंकल जल प्रवाह की कहानी दशकों पहले

0: लेती है। मैं शताब्दियों से निर्भीक प्रवाहित होता चला आ रहा था, अपनी शक्ति का परिचय देता हुआ, अपने पाषाणी तटों को उत्क्रमित करता हुआ, मानवीय शक्ति को चुनौती देता हुआ।
1: लगता है तुम दामोदर हो।
0: हाँ, मैं दामोदर हूं। नदी नहीं, नद, ब्रह्मपुत्र, शोणभद्र जैसे इन्हीं गिने नदों में एक। पुराणों में मुझे बार बार नद ही कहा गया है।
1: अच्छा है, तुम अपना परिचय स्वयं देने लगे, हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगे।
0: परिचय चाहिए तो चलो मेरे उद्गम स्थान को, वहीं से चलो मेरे साथ साथ। हाँ, यहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है, 3000 वर्ष से भी पहले। यहां मुझे देखकर कौन समझेगा कि मेरे भीतर कितनी ऊर्जा छिपी हुई है। ये उद्गम स्थान कोई गंगोत्री नहीं है, यमुनोत्री नहीं है, एक पहाड़ी जल स्रोत का उद्गम स्थान है।
1: ये स्थान है बिहार के छोटा नागपुर में, लोहरदगा जिले के पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियों के बीच। यहीं से दामोदर की पतली धारा निकलती है। चारों ओर हरे भरे जंगलों से घिरी पहाड़ियां, ऊपर खुला आकाश, सुबह की मुस्कुराती धूप, सांझ की लाल हंसी, पक्षियों का कलरव। यहीं से दामोदर का जल स्रोत फूटता है जो आगे चलकर विशाल नद में बदल जाता है। इसके भौतिक रूप का परिचय तो कोई भूगोल वेत्ता ही दे सकता है। प्रोफेसर डी पी सतपथी,
2: दामोदर नदी छोटनागपुर की पहाड़ियों से सिर्फ 610 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। गंगा की तुलना में यह बहुत छोटी नदी है। गंगा 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती है, जबकि दामोदर सिर्फ 530 किलोमीटर की। बिहार में 290 किलोमीटर बहने के बाद यह पश्चिमी बंगाल में प्रवाहित होती है और हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भैरवी, बोकारो, कोनार, गोवाई और बराकर। गर्मी में कहीं कहीं सूखी दिखने वाली यह नदी बरसात में उमड़ पड़ती है।
1: पलामू की पहाड़ियों से उतरकर ये नदी आगे बढ़ती है। अगल बगल साल, शीशम, सेमल आदि के पेड़ों से भरे जंगल गाते रहते हैं। कहीं कहीं किनारे पर बसे गांवों का जीवन पर्व त्योहार मनाता हुआ नाचता गाता रहता है।

0: सुनो, मेरी आवाज सुनो। दामोदर कमर पेट पहाड़ी से उतरकर यहां तक चला आया। किसी ने उसका ओजस्वी स्वर नहीं सुना। सुना लोगों ने मेरे तट पर बसे रामगढ़ में सैनिक छावनी का संगीत, सैनिकों का अभ्यास परेड। वहां प्रसिद्ध सिख रेजिमेंट की छावनी है ना। और उसके बाद आया है ये स्थान। ऊंचाई से सहसा नीचे उतरती मेरे जल प्रवाह को सुना जा सकता है। इसमें केवल मेरा नहीं, भैरवी का भी स्वर है।
1: हाँ, ये दामोदर और भैरवी का संगम है, प्रसिद्ध तीर्थ राजतपा, जिसे अब लोग रजरप्पा कहते हैं। प्रकृति की सुंदर लीला भूमि है ये। वहीं एक प्राचीन शिला भूमि के ऊपर स्थित है माँ छिन्नमस्ता का पावन मंदिर। इसके महात्म्य के संबंध में पंडित बालेश्वर नाथ पाठक बताते हैं।
2: यही मेधा ऋषि ने राजा सुरथ को देवी महात्म्य बतलाया था और उन्हें देवी की आराधना करने का परामर्श दिया था। यह प्रसंग मार्कंडेय पुराण में आया है। यही

0: राजा सुरथ ने कठिन तपस्या से देवी को प्रसन्न किया था, इसी से इसका नाम पड़ा राजतपा। आज भी माँ छिन्नमस्ता के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
1: मानव विज्ञान के प्रोफेसर रमाकांत प्रसाद कहते हैं,
2: दामोदर नदी का मंदिर में सबसे मुख्य मंदिर है राजरप्पा, जो कि सबसे आराध्य देवी मानी जाती हैं, चाहे वो जनजाति हो इस क्षेत्र का, गैर जनजाति हो, पिछड़ी जाति हो या और कोई भी हो, इसलिए और यहाँ लोग जितने हैं वे शादी ब्याह मुंडन या जीवन संस्कार के जो भी हैं उत्सव सब का केंद्र उसी को मानते हैं।
3: मैंने इस मंदिर को बनते देखा है, इसे ही नहीं अपने तट के सभी निर्माणों को देखा है। मुझे याद है अभी कुछ दशक पहले तक मेरी विनाश लीला से लोगों में हाहाकार मचा रहता था।
1: बाढ़ आती थी, तबाही होती थी।
4: दामोदर अभिशाप की नदी के रूप में प्रसिद्ध रही है। इस नदी ने 3000 वर्ष पहले अपने तट पर एक गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया था, वही अभिशाप में बदल गई है। गत 700 वर्षों में बार बार इसमें बाढ़ आई, 20 तो बहुत भयानक रही। सन 1943 की बाढ़ ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हजारों गांव बह गए, महानगर कलकत्ता के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया था। तब शासन ने दामोदर की चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया, बांधों की योजना बनी। 7 जुलाई 1948 को भारत की संविधान सभा ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन बिल पास किया और काम शुरू हुआ।
1: उस समय पंडित नेहरू ने कहा था, दामोदर घाटी योजना स्वाधीन भारत में प्रारंभ की गई महत्व विकास योजनाओं में एक है, इसने नए भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसी बड़ी योजना जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी को कार्यान्वित होते देखकर प्रसन्नता का अनुभव होता है। कार्य प्रारंभ हुए दामोदर को बांधने के, केवल दामोदर नहीं उसकी प्रमुख सहायक नदियों को भी, क्योंकि दामोदर की विनाशकारी शक्ति केवल उसकी शक्ति नहीं उसकी सहायक नदियों की भी थी। एक के बाद एक बांध बनने लगा। 21 फरवरी 1953 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बराकर पर तुलैया बांध का उद्घाटन किया।
5: ५५ में दामोदर पर दुर्गापुर बांध का,
1: 1957 में बराकर पर मैथुन बांध का और दो ही वर्ष बाद दामोदर पर संकेत बांध का।

0: और स्वाधीन भारत के नव जागृत लोगों ने मुझे बांध दिया, दाम शक्ति संपन्न दामोदर को बांध दिया। नए भारत ने मेरी शक्ति पहचानी, उसने शताब्दियों से आते हुए अभिशाप को वरदान में बदल दिया। अब मेरी शक्ति उसकी शक्ति बन गई है, मेरी ऊर्जा उसकी ऊर्जा बन गई है।
1: स्वाधीनता प्राप्ति के बाद नए भारत के नए तीर्थ बनने लगे दामोदर के तट पर। हर बांध एक तीर्थ, हर उत्पादन केंद्र एक नया मंदिर, अनेक नए नए औद्योगिक संस्थान खड़े हो गए इसके किनारे।

0: तस्वीर बोकारो जिले में तोनू गांव के निकट तोनू घाट बांध है, दामोदर नदी पर, बोकारो थर्मल पावर प्लांट के दक्षिण पश्चिम में। सन 1965 में इसकी नींव पड़ी थी। जलापूर्ति 1972 से शुरू हुई। बोकारो स्टील प्लांट और दूसरे उद्योगों को तो इससे जलापूर्ति की ही जाती है। बंगाल के कई भागों तक इसका पानी पहुंचता है।
1: वही देखो, वहां छोटे छोटे हरे हरे वृक्ष और झाड़ियों से ढकी पहाड़ियों की बगल में कोई फैक्ट्री है। चिमनी से निकलता धुआं काला नहीं, नीला नहीं, बिल्कुल पीला। उसमें कभी कभी लालिमा छिटक पड़ती है, नीला आकाश और उसमें तिरते बादल के टुकड़े उस पीले धुएं में रंग जाते हैं।
0: ये गोमिया का बारूद कारखाना है। इसके प्रशासनिक सेवा प्रबंधक अरुण कुमार वर्मा के शब्दों में,
2: भारत में पहला और सबसे बड़ा व्यावसायिक बारूद का कारखाना छोटा नागपुर के कोनार और दामोदर नदियों के बीच स्थित है। इस कारखाने का उद्घाटन 1958 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। राष्ट्र के निर्माण में सतत सहयोग देता आया है।
0: उधर एक और नया मंदिर है। दामोदर की सहायक नदी बोकारो पर निर्मित बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, और वहीं थोड़ा आगे बढ़कर दामोदर पर बना चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन। बोकारो का स्टेशन जब 60वें दशक में बना था तब देश का सबसे बड़ा ताप विद्युत उत्पादन केंद्र था, और यही है बोकारो का लौह उत्पादक औद्योगिक संस्थान BSL, जिसकी परियोजना अधिशासी निदेशक यज्ञ प्रकाश शर्मा ने बताया।
3: बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना एक कंपनी के रूप में 29 जनवरी सन 1964 को हुई थी। इस स्टील प्लांट की जो कल्पना की गई वो ही इन मुद्दों को देख करके की गई कि इस स्थान में हमको पास में ही अयस्क है, कोयला है और पानी है।
0: दामोदर पर आधारित स्टील प्लांट सिर्फ बोकारो में नहीं है। अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक डॉक्टर सुरेश झा अजीत के शब्दों में,
4: दामोदर नदी पर आधारित है भारतीय इस्पात प्राधिकरण के 3 प्रमुख इस्पात संयंत्र दुर्गापुर, बर्नपुर एवं बोकारो। बर्नपुर, दुर्गापुर एवं बोकारो के इस्पात कारखानों का देश की प्रगति में बहुमूल्य योगदान रहा है। इन कारखानों ने इस क्षेत्र की काया ही पलट दी है।
0: ये सिंदरी का खाद कारखाना है, स्वाधीन भारत में पब्लिक सेक्टर का पहला खाद कारखाना। मशीनें चल रही हैं, भट्टी के चिमने से आग की लाल लाल लपटें निकल रही हैं, धुएं के बादलों से एक ओर का पूरा आकाश ढक गया है। इस कारखाने के बारे में भारतीय खाद्य निगम सिंदरी के विद्युत एवं जल सेवा अधीक्षक दीप नारायण प्रसाद,
5: फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंदरी यूनिट की स्थापना 1951 में, कमिश्निंग 1951 में हुई। उस समय इसकी स्थापना दामोदर नदी के किनारे इसलिए की गई कि पानी की आवश्यकता काफी पर्याप्त मात्रा में इस कंपनी को है।
1: मैंने इस क्षेत्र के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए खुले हाथों से अपना वरदान लुटाया है। मैंने लोगों को जल की सुविधा दी, विद्युत उत्पादन केंद्र बने, कल कारखाने खुले, और ये सब संभव हो सका मेरी कोयला खानों से।

0: देश में उपलब्ध इस काले सोने की संपदा का आधा हिस्सा दामोदर की तटवर्ती खानों से ही निकाला जाता है। सीसीएल के डीएमके क्षेत्र के डिप्टी चीफ सर्वे ऑफिसर एन पाथ्रो का कहना है,
1: बिहार से बंगाल तक जितना कोल कोयला है यही दामोदर का चलते ही हुआ है और ये दामोदर के ही है, दान है। डीएमके क्षेत्र में

0: विभिन्न रूपों में समृद्ध बनाया है।
1: दामोदर के जीवनदायी महत्व को उसके तटवर्ती उद्योगों, संस्थानों और बस्तियों के लोग सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। भारत कोकिंग कोल के चांच विक्टोरिया क्षेत्र के प्रधान प्रबंधक आरसी पांडे कहते हैं,
2: दामोदर नदी हम लोगों के लिए एक बड़ी देन है इस एरिया के लिए। उसके नहीं होने से हम लोग कुलेरी वालों को जल के लिए तथा बालू के लिए तकलीफ होती है। ये विदित है कि कुछ क्षेत्रों में हम लोग कोयला निकालकर बालू भर देते हैं ताकि ऊपरी सतह या विलेज या शहर डैमेज ना हो, और इसके लिए हम लोगों को बालू इस दामोदर नदी और बराकर नदी से मिलता है।
0: कितना अंतर आ गया है मेरे जीवन और परिवेश में। आज जहां खाने हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, नए बसे शहर हैं, वहां कभी जंगल थे, सिर्फ जंगल।
1: द इंडियन नेशनल आर्ट एंड कल्चर से संबद्ध बुलु इमाम कहते हैं,
3: हमारे दामोदर नदी भी ऐसे ही एक पूरा जंगल का इलाका था। कमरपेट पहाड़ जहां से वो उठती है, वहां से लेकर के रानीगंज कोलफील्ड तक ये जंगल ही जंगल था।
1: बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के स्थान से विस्थापित सोहन गोप,
4: अभी तो हम यहाँ के जो है खास करके जो है बासी हैं, और यहाँ का मेरा जो है बाप दादे ने जो है इस मकान को यहाँ से रखा, खेत जमीन भी सब बनाया इस जगह पर। हम लोग को पूरा जो है जीवन इसी में हम लोग को व्यवत करता था। खेत बाड़ी था चारों तरफ से, इसमें जो है सब उपजाऊ जमीन था, जंगल भी काफी था।
0: मेरे तट पर अनेक बड़े बड़े औद्योगिक नगर बस गए हैं, पर आज भी किनारे पर बसे गाँव के लोग अपना सहज जीवन जीते जा रहे हैं, नाचते हुए, गाते हुए, पर्व त्योहार मनाते हुए।
1: तटवर्ती गांव के लोग नाचते गाते जी रहे हैं, पर जमाने का दर्द उनके गीतों में भी उतर आया है।
5: ना वो दो नदी बस्ती होड़ का ना वो लेखा पोड़ा आते
1: हैं। हम लोग पशु की तरह मेहनत करते हैं, सब कुछ पैसा मिलता है। हम आदिवासी बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं। हम लोग माटी काट कर बच्चों का पालन करते हैं।
0: उनसे भी अधिक गहरा दर्द उनका है जो अपनी जमीन से विस्थापित हो गए हैं।
1: मैथन बांध के निकट गोगना गांव का रहने वाला मैनेजर टिडू कहता है,
2: पहले खेती बाड़ी करते थे, जमी जगह भी था, बांध पुखुर भी था, और ऐसे फालतू का दिन में मछली उछली भी हम लोग पकड़ते थे। अभी तो मछली मिलने से भी उतना हम लोग नहीं करते हैं, और ऐसे करता है तो लेकिन डीबीसी को पकड़ लेता है, आप लोग काहे मछली पकड़ते हैं।
1: जो विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, की जा रही है, पर है तो वे अपनी धरती से विस्थापित है।
0: हाँ, दामोदर की संतानें विस्थापित हुई है, मुझे उनसे सहानुभूति है। पुरानी व्यवस्था बदलती है तो कष्ट तो होता ही है, पर नई व्यवस्था बनने के अपने लाभ भी है।
1: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर अजीत,
6: छोटे छोटे गांवों के समूह के स्थान पर आधुनिक सुविधा संपन्न नगर विकसित किए गए हैं। इन संयंत्रों ने यहाँ स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर दिए हैं, वहाँ लघु उद्योगों की स्थापना में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। अनजाने गांव व कस्बे आज भारत के मानचित्र पर गौरवमय स्थान अर्जित कर चुके हैं।
1: खाने में, नए औद्योगिक संस्थानों में, नए बसे नगरों में लोगों को नई नई सुविधाएं मिली हैं। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके किनारे की क्षेत्रीय संस्कृति अखिल भारतीय संस्कृति में बदल गई है। बोकारो के सांस्कृतिक जीवन से जुड़े अमलेंद्र चैटर्जी कहते हैं,
7: यह हम लोगों को एक गर्व है कि आस्ते आस्ते स्टील प्लांट बढ़ते हुए हम लोगों का संस्कृति भी बढ़ते गया है। यहाँ बोकारो स्टील प्लांट में हमारा भारतवर्ष का हर एक प्रोविंस का, ऑलमोस्ट ऑल प्रोविंस का कुछ ना कुछ आदमी एम्प्लॉयड हुए हैं, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हर एक जाति, हर एक भाषाओं का संस्था डेवलप कर

0: लगा, जैसा आपको भोजपुरी समाज फॉर लोकल भोजपुरी पीपल, देन उत्कल पठागार था फॉर ओरियस, मिलवर्तन संस्था था फॉर पंजाबी पीपल, देन मलयाली समाजम था फॉर केरलाइट्स, देन आंध्रा एसोसिएशन फॉर आंध्राइट्स, तमिल मंद्रम फॉर तमिल पीपल, कनाडा संघ था फॉर कर्नाटक पीपल।
1: इसी प्रकार विभिन्न धर्म वाले के लिए धर्म स्थानों की व्यवस्था हुई है। राम मंदिर, शिव मंदिर, कालीबाड़ी, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, बौद्ध विहार आदि। ये सिर्फ बोकारो और सिंदरी की बात नहीं, सभी नए बने औद्योगिक नगरों में भी यही बात है। दामोदर भारतीय संस्कृति का नद है, सर्वधर्म समन्वय।

माँ कल्याणेश्वरी के मंदिर से आरती की आवाज आ रही है, महफिल से, माई के स्थान यानी माई स्थान से। शताब्दियों पहले माता कल्याणेश्वरी के इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मैंने इसे बनते देखा है। सिद्ध पीठ है यह, एक तरह से बराकर के तट पर स्थित है यह मंदिर। बहन बराकर वहां से आगे बढ़कर मुझसे यहाँ सेंगोरिया में मिलती है और इसके बाद हमारी यात्रा साथ साथ चलती है।

ये बंद भूमि है जिसे कभी दामोदर के जल प्रवाह ने बार बार तबाह किया था। 1955 में दामोदर पर दुर्गापुर बांध का उद्घाटन हुआ और फिर अनेक नहरें निकाली गईं, तो इस इलाके का नक्शा ही बदल गया। बाढ़ का आना तो रुका ही, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी और पूरा क्षेत्र अत्यंत उर्वर बन गया।

0: जब कोई उत्पाद संयंत्र बना तो उस क्षेत्र का रूप ही बदल गया। साल के घने जंगल, छोटे छोटे गांवों और खेतों से घिरे दुर्गापुर को लोग जंगल महल के नाम से जानते थे। कारखाना खुला तो देखते देखते सारा ग्रामीण परिवेश एक आधुनिक विस्तृत औद्योगिक नगरी में बदल गया। मैं इसका साक्षी हूँ।
1: इतना औद्योगिक विकास शायद ही किसी अन्य नदी के तट पर हुआ है। दामोदर के किनारे विकसित उद्योगों ने उसके लिए ही नहीं, उसके तटवर्ती समग्र जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। इसके किनारे 15 कोल वॉशरीज हैं, 6 पावर प्लांट हैं, 4 उर्वरक और रासायनिक संयंत्र हैं, 1 सीमेंट फैक्ट्री है, स्टील प्लांट भी है, बारूद कारखाना भी है। इन सब के बहिर्स्राव, राख, कोयला चूर्ण, तेल के धोवन आदि से दामोदर का जल प्रदूषित हो रहा है, उसका जल विषाक्त बन रहा है।
0: इसी से कहता हूँ, मुझे विष की धारा में मत बदलो। मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तुम मुझे जीवन दो। मैं तो समय का यात्री हूँ, समय के साथ चलता आया हूँ। बंगाल की सबसे श्यामला धरती पर मैं हुगली नदी में मिलता हूँ और उसी के साथ जाकर सागर में समाहित हो जाता हूँ, स्वयं सागर बन जाता हूँ।
1: बहता जा रहा है दामोदर, वो बांधों का नद है, निर्माणों का नद है, खनिज संपदा का नद है, सुख समृद्ध का नद है, अभिशाप से वरदान में रूपायित हो जाने वाला नद है। ये कृषि संस्कृति और औद्योगिक सभ्यता के समन्वय का नद है, सौंदर्य और पौरुष का नद है, भक्ति और शक्ति का नद है। शताब्दियों से बहता चला आया है, बहता चला जा रहा है दामोदर।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि शिव पार्वती विवाह के बाद भी शिव पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। व्याकुल देवता एक बार फिर प्रभु शिव शंकर की शरण में पहुंचे। महादेव ने उन्हें अपने पुत्र की उत्पत्ति का बीज दिया। अत्यंत तेजस्वी और तापमय होने के कारण देवता उसे स्वीकार नहीं कर पाए। ये बीज निर्मल शीतल गंगा को सौंप दिया गया। इससे देवी पार्वती बहुत दुखी हो गई। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक दिव्य बालक उत्पन्न किया और उसका नाम रखा गणेश। प्रस्तुत है इससे आगे का प्रसंग। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: शौनक जी, बालक गणेश को माता पार्वती ने दिव्य छड़ी देकर द्वार पर पहरा देने को कहा। वे तुरंत द्वार पर जाकर सजग प्रहरी बनकर खड़े हो गए।
2: फिर क्या हुआ महाभाग सूत जी?
1: शिव जी ने नंदीश्वर को पार्वती जी के भवन पर भेजा ये जानने के लिए कि स्नान में विलंब का क्या कारण है। देवता उनके दर्शनों को आतुर हैं। नंदीश्वर वहां पहुंचे तो उन्होंने द्वार पर गणेश जी को डटा पाया।
3: अरे, माता पार्वती के भवन द्वार पर यह अद्भुत अपरिचित बालक कौन खड़ा है? पूर्णता माता की ही प्रतिमूर्ति प्रतीत हो रहा है। चलकर पूछता हूं। तुम कौन हो बालक और यहाँ क्या कर रहे हो?
4: मैं पार्वती गण हूँ और उनके भवन द्वार की रक्षा कर रहा हूँ। वृषभराज, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं?
3: मैं भगवान शिव का प्रथम गण नंदी हूँ और माता पार्वती के लिए संदेश लाया हूँ।
4: परंतु आप अभी भीतर नहीं जा सकते नंदीश्वर, माते स्नान कर रही हैं।
3: तो बालक राज, आप ही उन्हें संदेश पहुँचा दें।
4: हम भीतर नहीं जा सकते। माता पार्वती का आदेश है कि बिना अनुमति के कोई भीतर ना आने पाए।
3: हट मत करो बालक, मत करो हट। संदेश अति आवश्यक है।
4: हम हट नहीं कर रहे हैं, मात्र माता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं।
3: तो हम भी देवाधिदेव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं बालक।
4: तो जाइए, अपने देवाधिदेव से कह दीजिए कि गणेश के रहते माता की अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता।
3: ठीक है, हम जा रहे हैं बालक। तुम्हारी इस हट का परिणाम अच्छा ना होगा, ना होगा अच्छा।

0: पार्वती गण अनायास ये कौन सा पार्वती गण उत्पन्न हो गया?
1: जो भी हो देवाधिदेव, वो बालक है अति तेजस्वी और बलशाली।
0: इतना बलशाली कि हमारे प्रथम गण स्वयं नंदीश्वर उससे भयभीत होकर हमारी शरण में आ पहुंचे।
1: उस बालक के शरीर में इतना बल ना भी हो जितना हमारे शरीर में है, परंतु भगवान वो बहुत बड़े हठ बल का स्वामी है।
0: नंदीश्वर,
1: भगवान
0: उस बालक को ये हठ बल देवी पार्वती ने ही दिया है। नंदीश्वर,
1: आज्ञा प्रभु।
0: जाओ, समस्त गणों के साथ वहां जाओ। पहले प्रेम पूर्वक प्रयास करके उस बालक को द्वार से हटा दो। यदि फिर भी ना माने तो बल प्रयोग करो। वो अकेला गण इतने सारे गणों के आगे क्या कर पाएगा? यदि देवी पार्वती का यही हठ है तो हमारा भी हठ है। देवी पार्वती को अपने हठ का फल अवश्य मिलेगा। जाओ नंदीश्वर, आवश्यकता पड़े तो शिव आज्ञा से युद्ध भी करना।
1: जैसी आज्ञा देवाधिदेव। आओ शिव गणों, आओ। अरे नादान हठी बालक, प्रेम की भाषा तू संभवता नहीं समझता, हमारे मार्ग से हट जा। हम सभी श्रेष्ठ शिव गण हैं, तुझे भी ये कण मान रहे हैं, इसलिए तुझे अब तक छोड़ रखा है।
2: मैंने भी कहा था ना, मैं पार्वती गण हूँ। सभी गण क्षमता में एक दूसरे के समान हैं। तुम शिव के द्वारपाल हो, मैं पार्वती माता का द्वारपाल हूँ। तुम शिव की आज्ञा मानो, मैं माता की आज्ञा मानूंगा।
1: आक्रमण, आक्रमण करो, आक्रमण।
3: गणों ने बालक गणेश पर आक्रमण कर दिया। चल देवी को सूचना दे।
2: अरे अरे रुक विजया, देख तो पार्वती पुत्र शिवगणों की क्या दुर्गति बना रहे हैं।
3: अरे शिवगण परास्त होकर भाग खड़े हुए हैं।
2: अरे देख तो सब देवतागण दूर खड़े मंत्रणा कर रहे हैं।
3: जया, स्वयं ब्रह्मा जी इधर आ रहे हैं।
4: वत्स पार्वती गण,
2: इतने सारे बलशाली शिवगण तो मुझसे परास्त हो गए, अब क्या आप अकेले मुझसे युद्ध करेंगे?
4: नहीं पुत्र, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शांति स्थापित करवाने आया हूँ।
2: पहले तो एक बालक से युद्ध करते हैं, फिर भयभीत होकर शांति की बात करते हैं। कैसे देवता हैं आप? जाइए, कह दीजिए अपने शिव से, मैं माता की आज्ञा के बिना यहाँ से नहीं हटूंगा।
3: अरे देख तो विजया, ब्रह्मा जी भी अपना सम्मुख लेकर लौट गए।
2: तुम धन्य हो पार्वती पुत्र, आगे भी ऐसे ही डटे रहना। तुम्हें अपनी माता के सम्मान को और ऊंचा करना है।
3: अरे देख तो विजया, भगवान विष्णु के नेतृत्व में सभी देवता इधर ही चले आ रहे हैं।
2: आप निश्चिंत रहे देवियों, मुझे मेरी माता का आशीर्वाद प्राप्त है, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आओ देवता, आओ मुझ पर अपनी बल परीक्षा कर लो।
5: आइए शिवगण, चल के देखिए तो।
4: सूर्यदेव, हमने बहुत से देव, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व देखे हैं, परंतु इस गणेश्वर जैसा पराक्रम किसी में नहीं है।
6: हाँ इंद्रदेव, हाँ। अरे ये क्या, इस बालक ने तो विष्णु जी के

0: सुदर्शन चक्र के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सूर्यदेव अनर्थ हुआ चाहता है। वो कैसे इंद्रदेव?
1: स्वयं भगवान शिव शंकर क्रोध में उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने उन्होंने अपना धनुष उठा लिया है।
0: परंतु इस वीर बालक ने आज के एक बार से ही महादेव का धनुष भूमि पर गिरा दिया है।
1: क्रोधित महाप्रभु ने अपना त्रिशूल उठा लिया है।
2: हे दृष्ट बालक, तूने शिवाज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किया है, ले परिणाम भुगत।
3: आपने महाप्रभु ये क्या किया? अपने त्रिशूल से पार्वती पुत्र का सिर ही काट डाला।
0: पार्वती पुत्र? पार्वती पुत्र?

0: शरीर अपने से अलग हुआ पड़ा है। ना कोई कंपन, ना कोई स्पंदन, पुत्र अभी तो मैंने तुझे जी भर कर देखा भी ना था, मात्र तुझा एक बूंद जल तुझ पर छिड़का भी ना था। अरे देवताओं, ये कौन सा बैर निकाल रहे हो मुझसे? पूर्व जन्म में पति से बिछो कर आया और इस जन्म में पहला पुत्र बीज मुझसे छीन लिया।
1: देवी, देवी वो तारकासुर
0: इंद्र, तुम्हें अपने सिंहासन से इतना मोह है कि उसे बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरे नाथ भक्त वत्सल हैं, उन पर भक्तों का अधिकार मेरी अपेक्षा कहीं अधिक है, इसीलिए मैं बीज दान के उपरांत भी शांत रही। परंतु मेरे इस निर्बोध बालक ने किसी को क्या हानि पहुंचाई थी जो उसके पिता के हाथों ही उसका वध करवा डाला? दंड मिलेगा, तुम सबको इसका दंड अवश्य मिलेगा।
2: अरे ये क्या इंद्रदेव, देवी पार्वती पांव पसार कर धरती पर बैठ गई हैं।
1: हाँ, नेत्र क्रोध से रक्तिम हो उठे हैं वायुदेव,
2: ये तो प्रलय सूचक है।
3: शक्तियों, आज्ञा महावेणी, जाओ जाकर देव सेना में प्रलय मचा दो। देवता, राक्षस, ऋषि जो मार्ग में आए उनका भक्षण कर लो।
4: जैसी आज्ञा जगदम्बे।
2: विधात, देवी पार्वती द्वारा उत्पन्न ये 10,000 शक्तियां तो सबको अपना ग्रास बनाती जा रही हैं।
5: हाँ श्री विष्णु हरे, ये तो असमय ही प्रलय कर डालेंगी। महादेवी की आज्ञा से वे सुर असुर मानव किसी में भेद नहीं कर रही हैं। शीघ्र ही कुछ उपाय करना होगा, अन्यथा महाप्रभु द्वारा रचित सृष्टि देखते देखते नष्ट हो जाएगी, हम सबका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
6: नारायण नारायण।
2: मुने नारद,
6: आज्ञा विष्णु देवा।
2: शिष्य कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, अपने गुरु को सामने पाकर कुछ शांत अवश्य हो जाता है, और देवी पार्वती तो चिरकाल से आपकी शिष्या रही हैं।
5: हमें विश्वास है पुत्र नारद, इस समय जगदम्बे का क्रोध तुम ही शांत कर सकते हो, हमारे अग्रणी बनकर प्रयास करो।
6: नारायण नारायण। ऐसे विकट समय में प्रयास के अतिरिक्त और किया भी क्या जा सकता है, विशेष रूप से तब जब स्वयं शिव शक्ति शिवा शक्ति के सम्मुख नतमस्तक हैं। आइए

0: हे देवी, हे पाप नाशिनी, ये जग संहार रोकिए, शांत हो जाइए। स्वयं आपके स्वामी भगवान शिव शंकर आपके क्रोध का ग्रास बनने जा रहे हैं। परम पिता ब्रह्मा, लक्ष्मीपति विष्णु, सभी देवता, ऋषि और समस्त प्रजा यहां हाथ जोड़े खड़ी है। देवी, इन्हें क्षमा कीजिए।
1: क्षमा देवी, क्षमा, हमें क्षमा करें देवी,
2: क्षमा करें,
1: क्षमा।
3: हे देवेशी, आप ही आदि शक्ति हैं, सृष्टि की निर्माण शक्ति, पालक शक्ति, संहारक शक्ति आप ही तो हैं। आपके कोप से त्रिलोकी विकल हो रही है देवी। परमेश्वरी, हम सबका अपराध क्षमा करें, शांत हो जाएं।
4: देवी पार्वती, आपके अपराधी, आपके दोषी हम हैं। हमारे किए का दंड आप इन्हें ना दें। अपने नेत्र खोलकर देखें देवी, आपके क्रोध से समस्त जगत भयभीत हो उठा है। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो।
5: नाथ, ये क्या रीति है? पहले अपराध किया जाता है, फिर क्षमा मांगी जाती है।
4: पार्वती, कुछ अपराध सुनियोजित होते हैं जो अक्षम्य होते हैं, परंतु कुछ अपराध क्षणिक आवेग, क्रोध और मतिभ्रष्टता के कारण हो जाते हैं। दंड के भागी वे भी होते हैं, परंतु प्रलय रूपी मृत्यु दंड के भागी नहीं होते। हमसे, स्वयं शिव से ऐसा ही अपराध हो गया है। दंड स्वरूप हम मौन खड़े अपनी प्रजा का संहार होते देखते भी रहे। अब इसे रोकें पार्वती।
5: देवाधिदेव, ये संहार तभी समाप्त होगा यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और आप सबके मध्य पूजनीय हो जाए। आप सब देवताओं को उसे सर्वाध्यक्ष का पद देना होगा, वो अग्र पूजा का पात्र बनेगा।
3: देवी पार्वती, त्रिलोकी के सुख के लिए आपने उचित मार्ग ही सुझाया है, हमें स्वीकार है।
6: हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है।
5: ठीक है, तो सर्वप्रथम आप हमारे पुत्र को जीवित कीजिए।
3: देवाधिदेव, आप ही उपाय बताएं।
4: देवगणों, आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करें। जो भी जीव पहले मिले उसका सिर काटकर इस बालक के धड़ से जोड़ दें, यह पुनः जीवित हो जाएगा।
6: जो आज्ञा महाप्रभु, जो आज्ञा महाप्रभु।
0: वायुदेव, उत्तर में तो ये बीहर स्थित है। यहाँ हमें कौन सा मनुष्य मिलेगा जिसका हम सिर काट पाए? यहाँ तो पशु पक्षी ही होंगे।
7: स्मरण करें इंद्रदेव, महाप्रभु ने कहा था कि जो भी पहला जीव मिले, पशु पक्षी भी तो जीव ही होते हैं ना?
0: अरे, ये तो एक विशाल शक्तिशाली एक दंत गजराज इस ओर आ रहे हैं।
7: यही हमें सबसे पहले दिखाई दिए हैं।
0: तो आओ वायुदेव, महादेव की आज्ञा का पालन करें। इस गज का सिर काटकर

0: भी चलते हैं।
1: हाँ,
0: है?
1: चलो
0: तो आइए।
2: ब्रह्मदेव
3: आज्ञा महाप्रभु।
2: इस गज मस्तक को बालक के शरीर से जोड़ दें।
3: अभी ले महादेव। हाँ ये लीजिए, गज मस्तक बालक शरीर से जुड़ गया।
2: विष्णुदेव
3: जी दयानिधान,
2: अब अभिमंत्रित जल इस बालक के पूरे शरीर और मस्तक पर छिड़किए।
3: जैसी आज्ञा महाप्रभु। देवाधिदेव, आपके जिस तेज से हम उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज इस बालक के शरीर में प्रवेश करे।

0: अरे चमत्कार चमत्कार, देखो देखो तो इंद्रदेव, बालक जीवित हो उठा, जीवित हो उठा।
1: हाँ वायुदेव, इसमें शिव तेज ने प्रवेश किया है। अरे ये तो पहले से भी अधिक तेजवान और बलशाली प्रतीत हो रहा है।
2: देख तू विजया, पार्वती पुत्र का ये गजमुख कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। हाँ जया, यहाँ उपस्थित सभी देवताओं से कितना भिन्न, कितना आकर्षक लग रहा है पार्वती नंदन। और देख तो इसके शरीर का रक्त वर्ण कैसी विलक्षण प्रभा फैला रहा है। देवी देवी पार्वती, नेत्र खोलिए, गिरिजा नंदन जीवित हो उठे हैं। पुत्र गणों में श्रेष्ठ गणेश, आओ मेरे गले लग जाओ पुत्र, आओ पुत्र गणेश आओ।
3: माते,
2: तुझे जीवित देख मेरे नेत्र तृप्त हुए, मेरा हृदय तृप्त हुआ पुत्र, मेरा मातृत्व तृप्त हुआ।
4: पुत्र गणेश आओ, हमारे निकट भी आओ।
2: माते जाओ पुत्र, ये तुम्हारे पिता स्वयं भगवान शिव शंकर हैं।
3: आप ही के गणों को तो मैंने भवन में प्रवेश करने से रोका था।
4: और उन्होंने आपसे कहा था कि वे मेरे शिव के गण हैं।
3: परंतु ये तो नहीं कहा था कि शिव हमारे पिता हैं। माता ने तो आपका नाम शंकर बताया था, अन्यथा हमसे इतनी बड़ी धृष्टता ना होती। हमारी बालक बुद्धि में तो मात्र माता की ही आज्ञा समाई हुई थी। हे देवताओं, अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा कर दें।
5: हे पार्वती पुत्र गणेश, आपको भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। मैं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा आपको आशीर्वाद देता हूं। आपका मुख सिंदूरी रंग से दमक रहा है, अतः मनुष्य आपकी सिंदूर से ही पूजा करेंगे। हृदय से आपकी आराधना करने वाले को सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। इस कारण आपका एक नाम सिद्धि विनायक होगा।
6: आपके स्मरण मात्र से ही मनुष्यों के सभी विघ्न समाप्त हो जाएंगे। मैं विष्णु आपको आशीर्वाद देता हूं कि गज मस्तक होने के कारण आप गजानन भी कहलाएंगे।
2: मैं विष्णु पत्नी लक्ष्मी वरदान देती हूँ, जब तक आप किसी का शुभ नहीं सोचेंगे उसे मुझसे लाभ प्राप्त नहीं होगा।
7: मैं ब्रह्मा पत्नी सरस्वती आपको आशीर्वाद देती हूँ कि समस्त जगत में आप सा ज्ञानी और गुणी और कोई ना होगा।
4: पुत्र गणेश।
3: आज्ञा पिताजी।
4: आओ पुत्र, हमारी गोद में बैठो, तुम हमारे दूसरे

0: पुत्र हुए।
1: जैसा आपका आदेश।
0: पुत्र गणेश, आज से हम सब देवता तुम्हें सर्वाध्यक्ष घोषित करते हैं। तुम आज से अग्र पूज्य हो। समस्त जगत के जीव सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करेंगे। यदि वे तुम्हारी पूजा पहले ना करके मेरी, ब्रह्मा या विष्णु की पूजा करते हैं तो वो पूजा सफल नहीं होगी।

0: अब आपका विरोध कोई नहीं कर सकता। आप स्वयं शक्ति के पुत्र हैं। किसी के भी अस्त्र शस्त्र आप तक पहुंचने से पूर्व ही छीन पड़ जाएंगे। ये मेरा ब्रह्मा का आपको वरदान है।
1: गणेश्वर, मैं विष्णु घोषणा करता हूं, आपका जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुआ है। अतः हर वर्ष आज का दिवस गणेश चतुर्थी के रूप में ही मनाया जाएगा। संसार में सुखों की कामना करने वाले यदि आज के दिन स्वच्छ हृदय से आपकी वंदना करेंगे तो उन्हें मनोवांछित फल मिलेगा।
2: उत्तम, अति उत्तम। क्यों वायुदेव?
3: हाँ इंद्रदेव, आज का दिवस अति मंगलकारी दिवस है।
4: देवताओं, शंख नाद से इस दिवस का स्वागत करो। किन्नरों, वाद्य वृंद प्रस्तुत करो। अप्सराओं, अपने नृत्य से इस महा उत्सव को शोभायमान करो।

0: आहा, महाभाग सूचि, कैसा अलौकिक मनोरम परम आनंददायक दृश्य रहा होगा।
1: हाँ महाज्ञानी शौनक जी, शिव जी और पार्वती जी को तो विशेष आनंद पहुंचा। महादेवी ने कोप त्याग दिया, सब सुख पूर्वक अपने धामों को लौट गए।
0: तो परम ज्ञानी सूत जी, ये थी गजानन गणेश की उत्पत्ति की कथा। परंतु सूत जी, देवाधिदेव महादेव ने अपने पुत्र की उत्पत्ति का जो बीज गंगा माता को सौंपा था, उसका क्या हुआ?
1: शौनक जी, ये प्रसंग मैं विस्तार से आपको अगली भेंट पर सुनाऊंगा।
0: आप जैसा उचित समझें सूत जी।
2: श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता चतुर्थ खंड के 15वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक से लिया गया था।

बाल कृष्ण की प्रीत में तमय हर गोपी दिन रात कान्हा के ही सपने देखती है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल संग गोकुल में गैया चराते बंसी बजाते माखन चुराते और गोपियों संग रास रचाते हुए मनमोहक लीलाएं करता है। यमुना किनारे सांझ सकारे जब गोपाल मुरली की मधुर मधुर धुन छेड़ता है तब गोपियां सुध-बुध खो बैठती हैं। कृष्ण भक्त गोपी राधा नंदलाल से प्रीत तो कर बैठी मगर उसे चिंता सताती कि कहां त्रिभुवन का स्वामी सर्वव्यापी नारायण और कहां वो ब्रज की एक साधारण सी गोपी। वो ध्यान में मग्न बंसी बजैया से पूछती रहती, हे गोविंद बांके बिहारी तू ही बता कैसे निभेगी प्रीत हमारी।

0: इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुन शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतिया जानगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखन।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। इस वेले शाम दे 4:30 वज रहे ने। आओ हुण असी श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करदे हां।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

मुरली बाल कृष्ण की सबसे प्यारी सखी, जिसे मुरलीधर एक पल भी अपने से अलग नहीं कर पाते। गोपियां और स्वयं राधा भी मुरली से जलन महसूस करती। गोविंद के लिए बावरी हुई हर गोपी का स्वप्न था कि कान्हा उसे बांसुरी

यही दुर्गा देवी जमुना द्वारा असंसार चक्र चाल्या करेश। योगियों जमनो सदैव चिंतन करेश। जमुना प्रकाश थी आ समस्त जगत प्रकाशित थई रह्यू छे। ए दुर्गा जगत जननी महाशक्ति छे। आसुरी शक्ति ऊपर दैवी शक्ति नो विजय दर्शावती आ महाशक्ति नी भारत देश मां अन्यत्र पण विशेषतः नवरात्रना दिवसों मां नव दुर्गा रूपे

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

एक दिन नटखट नंदलाला गोपाला माखन चोरी की लीला करते हुए मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्दों में सुनिए।

पल रुककर कन्हैया मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता है। दूसरों की मटकी तोड़ने की तुझे क्या आवश्यकता। भगवान मैया को मटकी और माखन का रहस्य कैसे समझाते।

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती और कहती है, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी। मैं तुझे सब सच सच बताता हूँ।

हे हे, रंगों का धमाल हुआ, देखो क्या कमाल हुआ, भंग का भी जमाल हुआ, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।